0: लाइका रेडियो,
1: location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner. Like our radio.
3: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
5: खुद से भी ज्यादा।
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
5: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
3: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT3.
0: Radio Wally takes you on a journey of hit tracks every evening at 7 p.m. Like her.

0: ये है Laika Radio, CTV and C5 proudly present हमारे राम, produced by Felicity Theatre, India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika Radio.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number.
3: Raj Badden drives Leicester home with Drive at 4 p.m. Laika Radio.

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अखरी

अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश। एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद.
3: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
2: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
4: Atif Aslam live in the UK.
5: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Lester Mellor is back with exclusive radio partner, Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester. New hits on Leica Radio.

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: Isha Rice Tasting on Friday, 29th of May at Opus Foods, 1062 to 1066 Warwick Road, Birmingham, B27 6BH.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन पोटैटो चिप्स।
2: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: जी टीवी HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
4: जगदात्री,
3: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
4: माला ले आना, लाइया जी।
3: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
5: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
3: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
6: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स।

0: आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। क्या गाना है, खूबसूरत गाना, और इसे क्या गाया है किशोर दा ने। और इसी गाने से मिलती जुलती चार लाइनें विजय जी आपने भी हमारे साथ शेयर की हैं कि जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता, कभी समय रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं, इसलिए जो समय अभी आपके पास है उसे जी डालिए, कल की चिंता में अपने आज के जीवन को खराब मत कीजिए। और इसी बात के साथ लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। किशोर दा की आवाज में गोलमाल फिल्म का था ये गाना, और उससे पहले प्रेम रोग फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और लता जी की आवाजों में। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स, और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मौसम ने थोड़ी सी करवट बदल ली है, आज मौसम में थोड़ी ठंडक है और इस ठंडक की हम सबको बहुत जरूरत थी। तो आज मौसम कहूंगी बहुत ही सुहाना है, और ऐसे सुहाने से मौसम में यहाँ पर सुहाने गाने मैं आपको सुनवाती रहूंगी। 1 बजे तक आप बस मेरा साथ देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो अगला गीत सुनवाने से पहले आपको हम याद दिला दे कि 1 pound आपको दे सकता है 127.3 भारतीय रुपए जब आप पैसा भिजवाते हैं वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू। और आपको बता दें कि बिफोर द एंड ऑफ द जून आपको मिल सकता है 75 pound का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड आल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.

0: भाई सर्दी खांसी मलेरिया और लवेरिया के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मौसम बदल रहा है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुखारिया जरूर हो रहा है। मतलब सर्दी जुकाम को मैंने सर्दी जुखारिया कर दिया, ये जरूर हो रहा है, क्योंकि जब गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आती है तो पता नहीं क्यों ये सर्दी जुखारिया बहुत फैलता है। और ऐसे लोगों से मिल रही हूँ जिन्हें हो रहा है, तो आप अपने आप को बचा कर रखिए, नहीं तो मौसम का जो मजा है ना वो सच में टिश्यू से समझ रहे ना नाक पोंछने में ही चला जाता है। एनीवेज उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं, मजे में हैं, और आपने मुझ तक ढेरों मैसेजेस भी पहुंचाए हैं। तो चलिए क्या करें, डाल लें उन पर एक नजर। चलिए फिर
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो लीजिए आपके मैसेजेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा एक बार फिर से इस शो में आपका स्वागत करती है, आपको कहती है, देती है मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम एंड थैंक यू। राजेश राजी आपका मैसेज मिला है और आपने लिखा है कि आपको रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गर्मी कुछ कम महसूस हो रही है। जी हाँ, आज गर्मी कुछ कम है, टेम्परेचर थोड़ा कम है। और आपने लिखा है कि सीखने का प्रयास करने से सोच मजबूत होती है। बहुत सुंदर विचार, स्वागत है आपका। और आपने इस गाने को जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला थे एंजॉय किया है। बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का ये फेवरेट गाना है इंक्लूडिंग मी। थैंक यू हमारी प्रज्ञा सोलंकी, आप हमारे साथ हैं। मिसेस पे के चियांग, थैंक यू, आप सुन रहे हैं। और आपने कहा है आपको हे फीवर हुआ है, देखा मैंने कहा ना ध्यान रखो, नहीं तो ये बदलते मौसम में बस यही होता है। एनीवेज जल्दी से ठीक हो जाइए। एसएस भोगल जी स्वागत है आपका। संध्या भाव सर थैंक यू। महेंद्र पटेल जी थैंक यू। नरेंद्र भागिया जी आपने चार लाइनें लिखकर भेजी हैं और लिखा है अर्ज किया है, क्या अर्ज किया है कि नजर में तुम्हारे नजारे रहेंगे, पलकों पे यूं ही चांद सितारे रहेंगे, बदल जाए तो बदल जाए ये जमाना, खुदा कसम हम तो हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू साथ देने के लिए। मधु जी स्वागत है आपका। गुरुदेव गांजा आप हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका भी। कैंट में सलमा जी सुन रही हैं, हरी श्रुदा हमारे साथ है, अर्जुन जी हमारे साथ है, और ये है समीना मैनचेस्टर में प्रोग्राम सुन रही हैं, कहती हैं बैक टू बैक गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, सो थैंक यू। थैंक यू तोसीप तोची, पनेश्वर जी, ज्योति जी, सत्यनारायण सैनी भारत से, विनोद जी, रोशनी जी, थैंक यू, स्वागत है आपका। और ये है मुमताज खान प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू। हमारी प्रज्ञा कहती हैं गाने तो मैं आपके फुल वॉल्यूम पर सुनती हूँ, थैंक यू। दिव्या जी, जासू जी, सहर जी, हरीश जी, वियाना से अनिल सोनी जी, मिसेस शेख, शरफून और जितने भी साथी घर में, गार्डन में, बाहर, काम पर, शॉप पर, किचन में, जहां भी सुन रहे हैं, आप सबके लिए जाता है ये अगला गाना।
1: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर मुकेश जी की आवाज में आवारा फिल्म से था ये गाना, और ये गाना सुनकर दिनेश पोपट जी आपका मैसेज आया है, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारी अमिता जी कहती हैं व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, तो चलिए ये गीत आपको भी डेडिकेट करते हैं। थैंक यू मानू जी, एम मानू जी। और हमारी कल्पना हाथी कहती हैं भाई नॉर्वे वालों को भी याद कर लो, बिल्कुल नॉर्वे वालों का भी स्वागत है इस शो में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: This is Leica Radio. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक ही नाम याद रखिए, Southall Travel. विजिट कीजिए Southall Travel पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं और विनर्स हैं ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के भी, और आप उनसे फोन पे बात कीजिए और बुक कर सकते हैं हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स एंड होटल्स एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. This is Ritu Sharma.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
6: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
10: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना, जिसमें आरडी बर्मन का म्यूजिक और फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है। शैलेंद्र सिंह की आवाज में डेडिकेट करते हैं हमारी संध्या भावसर को, जो बड़े ही प्यार से प्रोग्राम सुनती हैं। सपना एंड परेश जी स्वागत है आपका, एंड दिनेश सोरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, फरीदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताते चलूं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में होती है जोड़ी नंबर वन संडे के दिन, और आज की जोड़ी है राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की जोड़ी। जी हाँ, दोनों ही अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर फिल्म्स का हिस्सा रहे, तो आज उन्हीं फिल्मों के कुछ गाने सुनवाऊंगी आपको प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में जोड़ी नंबर वन में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 108.6 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: LEICA Radio.
1: LEICA Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो लीजिए, आज IPL का फाइनल मैच है और ये मैच अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा, और इस आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु खेलने वाली है, और देखते हैं कि इस बार का IPL मैच कौन जीतता है। मैच का हाल हमारे यहाँ से आपको बताया जाएगा, आप हमारा साथ देते रहिए।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the LEICA Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
4: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs, sirf $24.99.
3: Hamza Samosas 3 for 10.
4: Top Star Fried Onion. Only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pulp 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry
4: 82 Assistant Street LE12JU. Ya Rolex Hill LE54UN.
3: While stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Are we there yet?
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: How? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simzy before we left London.

0: Lindsay, since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
2: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
3: T's and C's apply.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: The timeless soul of Qualy returns to the stage.
7: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
6: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
7: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
6: Join us for a mesmerising night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
7: On Sunday, the 7th of June at Hackney Empire.
6: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
9: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
11: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉनस्टॉप

0: रविंद्र जैन के म्यूजिक पर आशा जी की आवाज में सौदागर फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आपने लता जी की आवाज सुनी। आर जी बर्मन का म्यूजिक, फिल्म का नाम जमीन आसमान। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम के सेकंड आवर की शुरुआत हो गई, और इस आवर में मैं आपको सुनवाती हूँ जोड़ी नंबर वन, जिसकी शुरुआत करने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में। और आज की जोड़ी नंबर वन है राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी। लेकिन उससे पहले आज मैं इतिहास के पन्नों को खोलने वाली हूँ और बात करने वाली हूँ उनके बारे में, जिनके बारे में शायद आप जानते हो या शायद नहीं भी जानते हो, लेकिन जानना जरूरी है। तो चलिए बात करती हूँ आज अहिल्याबाई होलकर की। आज ही के दिन वो बोर्न हुई थी इन 1725 में। बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, इसीलिए तो कहा कि इतिहास के पन्नों को खोलते हैं। और अगर अहिल्याबाई होलकर नहीं होती तो ये जो दर्शन मंदिरों के हम करते हैं ना, जो हम सभी के फेवरेट मंदिर हैं, जिसमें शामिल है काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गया और जितने भी मंदिर हैं, इन सब का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। और इसीलिए अहिल्याबाई होलकर हमारे भारतीय इतिहास की उन महानतम महिला शासकों में से एक हैं, जिनकी कुशलता, न्यायप्रियता और धार्मिक निष्ठा के लिए उन्हें राजमाता या पुण्य श्लोक कहा जाता है। आज ही के दिन 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में चौंडी गांव में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता मनकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस दौर में लड़कियों को शिक्षा जरा कम ही दी जाती थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। और जानते हैं, उनके सरल स्वभाव और उनके चारित्रिक गुणों से प्रभावित होकर महाराणा साम्राज्य के सेनापति मल्हार राव होलकर ने अपने पुत्र खांडे राव होलकर से उनका विवाह करवाया। लेकिन अहिल्याबाई होलकर का जीवन दुखों से भरा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1754 में कुम्हेर के युद्ध में उनके पति खांडे राव शहीद हो गए, और उस समय सती प्रथा चलती थी। वो सती होना चाहती थी, अपने पति के साथ अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि तुम एक कुशल शासक बन सकती हो, तुम क्यों नहीं इस राजपाट को संभालती हो। और इसके बाद उन्होंने अपनी ससुर की बात मानकर राजपाट को संभाला। लेकिन कुछ ही सालों बाद उनके ससुर का भी देहांत हो गया, और बाद में उनका एक पुत्र था वो भी एक युद्ध में मारा गया, और उसके बाद इंदौर के राज्य की पूरी कमान अहिल्याबाई होलकर के हाथों में आ गई। उन्होंने 28 साल तक सफलतापूर्वक राज्य किया, और उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर नर्मदा के तट पर महेश्वर को बनाया। अगर आप कभी महेश्वर गए हो तो आपने देखा होगा, बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ महारानी अहिल्याबाई होलकर का किला है, उनका महल है, और महेश्वर की साड़ियाँ भी बहुत सुंदर हैं। कभी मालवा घूमकर आइए और माहेश्वरी की साड़ी लेकर आइए, मज़ा आ जाएगा पहनकर। वो एक बहुत अच्छी राजा बनी, जनता की फरियाद सुनती थी, और राज्य में न्याय जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सत्य के आधार पर करती थी, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन सबसे ज्यादा याद उन्हें इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का, मंदिरों का, घाटों का और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। जैसे काशी विश्वनाथ, औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने पर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया। और जब मैं सोमनाथ मंदिर गई थी तो वहां भी मुझे पता चला कि सोमनाथ मंदिर जिसे तोड़ दिया गया था, जिस पर 17 बार आक्रमण हुआ था, उसे अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया, और बाद में जहां असल मंदिर था वहां भी मंदिर बनाया गया। तो अगर आप सोमनाथ जाते हैं तो वहां अहिल्याबाई होलकर का शिव मंदिर भी अभी भी है, जहां के मैंने दर्शन किए। और उसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब मंदिरों का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया। तो इनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज शायद जान गए होंगे, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और आज यही जन्मी थी। और ऐसे बहुत सारे हमारे पुराने राजा, रानी, देश के सेवक रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम फिल्म स्टार्स के बारे में तो बहुत बार सुनते हैं, इनके बारे में हमें नहीं पता होता, तो सोचा क्यों ना आज इनके बारे में बात की जाए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब शुरू करते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो जोड़ी नंबर वन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.3 भारतीय रुपए। और इसके अलावा एंड ऑफ जून तक अगर आप 1000 pounds ट्रांसफर करवाते हैं तो आप 75 pound का वाउचर ले सकते हैं, एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
2: हमजा समोसास 3 for 10।
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
2: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
2: केसर मैंगो पल 149। फुल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
2: व्हाइल स्टॉक Last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 020-8574-8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.

0: जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना फिल्म सूरज से लिया था। और वैसे तो ये जोड़ी सुपरहिट है और इन दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और जब भी इस जोड़ी की बात आती है तो मुझे सबसे पहले यही गाना याद आता है और यही गाना आई थिंक सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए आज के प्रोग्राम की जोड़ी नंबर वन की शुरुआत इसी गाने से की। और आप भी बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं लेकिन दो ही गाने बजाती हूँ तो देखती हूँ कि दूसरा गाना कौन सा है। लेकिन बता दूं कि अगला गीत मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मधु को, जिनकी सहेलियों ने, जिनकी फ्रेंड्स ने, जिन्हें वो टीम ए कहती है, उनके लिए एक सरप्राइज 60th बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान किया है जिसमें नाम है नीतू, कंचन, भाव ना, जोशुआ, प्रीति, दीपिका। तो भाई सबकी ओर से मधु जी एंड ऑफ कोर्स मेरी ओर से भी आपको भी हैप्पी बर्थडे। और ये जो गाना है हमारी जोड़ी नंबर वन का अगला गीत आपको डेडिकेट करते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाजों में साथी फिल्म से था ये गाना, और ये गाना नाम करते हैं अमिता जी के, जो कहती हैं क्या वर्ल्ड क्लास गाने हैं, चलिए आपके नाम किया। और साउथ हॉल से मैसेज आया है राज राम गुलाम जी का, आपको भी ये जोड़ी और ये गाने पसंद आ रहे हैं, थैंक यू। और आपने लिखा है कि दैट्स वॉज माई लेट वाइफ्स बेस्ट कैरियोके ट्यून, वो उन पर गाती थी, क्या बात है। इस गाने को सुनकर आपकी सारी मेमोरीज वापस आ गई, तो चलिए आई एम श्योर आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा। मिस्टर नरेंद्र पाठक थैंक यू, दिनेश सॉरी जी मेरा प्यार भी तू है, आपको ये गीत बहुत अच्छा लगता है, आपको नाम किया। उल्लास टोरंटो से है शरफून थैंक यू, जोड़ी आपको बहुत अच्छी लग रही है। राजीव पटेल जी आंटी जी कहती है ये तो मेरी फेवरेट जोड़ी है। संध्या वावसर कहती है वाओ, चलिए तो आप सबको जोड़ी इतनी पसंद है, और आप सबको इतनी पसंद है तो सोच रही हूँ इस जोड़ी का एक गाना और सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica
0: Radio. तो अगला गीत सुनाने से पहले आपको याद दिला दे कि भाई आप भी अगर मेरी तरह किशोर कुमार के फैन हैं तो तैयार हो जाइए क्रेजी फॉर किशोर के लिए। एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट हो रही है फीचरिंग केतन इंद्राणी संजय एंड दी 515 बैंड, और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19th जून को एट द प्रिंस रेजेंट होटल चिगवल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल है eventbrite.co.uk पर, या फिर कॉल कर सकते हैं आप 0208-515-5400 पर, आई रिपीट 0208-514-5400। और याद रखिए लाइका गोल्ड रेडियो है इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर।
1: दिस इज रितु शर्मा।
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: क्या खूबसूरत गाना लिखा है संतोष आनंद ने और क्या खूबसूरत धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरा फेवरेट गाना, और विजय जी आपने सही कहा, बहुत दिनों बाद आज इस गाने को मैंने प्रोग्राम में प्ले किया है और आप सब इंजॉय कर रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे विजय जी कहते हैं कि ऋतु पता ही नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए, तो मेरा भी हाल यही है आप सबके साथ, मुझे भी नहीं पता चला ये 2 घंटे कब निकल गए और कब हम लास्ट एंड फाइनल आवर में आ गए हैं। थैंक यू एसएस बोगल जी, कहते हैं चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, मेरा फेवरेट गाना है। तो आपको बता दूं सेम टू सेम मेरा भी फेवरेट गाना है। और आपको डेडिकेट करते हैं सर, थैंक यू संध्या भाव सर, ऑफकोर्स हमारी संध्या भाव सर, थैंक यू दिनेश सॉरी जी, प्रीति बेल्जियम से थैंक यू, हैना जी एंड हमारे नरेंद्र पांचाल जी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा रेस्ट कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू रागिनी जी, वत्सला जी, मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं आपने आस के पंछी का गाना नहीं चलाया, हाँ बजा दूंगी किसी दिन, पक्का बजाऊंगी, क्योंकि मैं दोबारा जब जोड़ी लेकर आऊंगी तो वो गाना बजाऊंगी। थैंक यू शेखर आनंद जी, हमारे साथ हैं रश्मि गनात्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, और आपको जोड़ी बहुत पसंद आई, कहती है मेरी फेवरेट जोड़ी है मिस्टर नरेंद्र पाठक एंड ऑफकोर्स हमारी आंटी जी नीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सब तैयार है ना आज के 3 वर्ड्स गेम को खेलने के लिए, चलिए फिर। ये है Like a Radio। तो इस आवर में हम 3 वर्ड्स गेम खेलते हैं और ये 3 वर्ड्स बॉलीवुड के गाने से मैं पिक करती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज के 3 वर्ड्स में पहला है उल्फत, दूसरा वर्ड है याद और तीसरा है चिराग। सोच रहे होंगे ऋतु कितना आसान गाना बताया है लेकिन फिर बता दो, चलो पहला है उल्फत, दूसरा है याद, तीसरा है चिराग। रफी और लता जी की आवाजें हैं, 1963 की फिल्म है, नौशाद जी का म्यूजिक है। अगर आपको पता है तो देर किस बात की है, फटाफट बताइए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भिजवाकर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको WhatsApp नंबर अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आज भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं तो 1 pound आपको देगा 127.3 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी यूनो SBI UK मोबाइल ऐप, और एंड ऑफ जून तक आप विन कर सकते हैं 75 pound का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और एक बार फिर से आज के 3 वर्ड्स रिपीट करते हैं। पहला वर्ड है उल्फत, दूसरा वर्ड है याद और तीसरा वर्ड है चिराग। रफ़ी जी, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ें हैं, 1963 की फिल्म है, नौशाद का म्यूजिक है। कौन सा है ये गाना बताइए जरा, इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवा कर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs सिर्फ $24.99.
2: Hamza Samosas 3 for $10.
3: Top Star Fried Onions only 99p.
2: Suhana Masalas 2 for $150. Ramdev Namkeen 2 for $149.
3: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
2: Kesar Mango Pearl 149. Full Makhana 2 for $5. Falcon Cash and and Kerry.
3: 82 Assistant Street, LE12JU, or Rowlatt's Hill, LE54UN.
2: While stocks last.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam, live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
13: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
14: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
15: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
13: अरे कहाँ हो तुम?
14: हो आलो आलो।
15: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
8: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
1: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: एस कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गाना आशिक की फिल्म से आपने सुना। और अनुराधा पौडवाल ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक बात बता दूं कि ये फिल्म महेश भट्ट ने बनाई थी और महेश भट्ट चाहते थे कि उनकी बेटी पूजा भट्ट इस फिल्म में काम करें, लेकिन पूजा भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और फिर एंट्री हुई अनु अग्रवाल की, और देखिए अनु अग्रवाल ने इस फिल्म में अच्छा काम किया और आज तक वो इस फिल्म के लिए जानी जाती हैं। और इस फिल्म में था नदीम श्रवण का सदाबहार म्यूजिक। और आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर ऋतु शर्मा आपके साथ है।
1: ये है लाइका रेडियो।
0: और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं मुझे। हरीश खत्री जी कहते हैं, कुमार सानू का ये मेरा फेवरेट गाना है, मेरे नाम कीजिए। चलिए, मैंने आपके नाम किया एंड आपके बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, थ्री वर्ड्स गेम के आंसर्स मिलते जा रहे हैं। एंड मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं कि आज ऋतु मैंने गाने को जानने के लिए गूगल की मदद नहीं ली, आज मैंने अपने आप गाना पहचाना है। तो अयूब जी, आज आपको 10 में से 20 बोनस नंबर देती हूँ, ठीक है। और अगला ये जो ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गाना है, ये भी सबके साथ साथ आपके भी नाम करते हैं।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, उमा देवी की आवाज में था ये गाना और हमारे राजेंद्र सिंह कालरा कहते हैं कि काश उमा देवी ने कुछ और भी गाने गाए होते और हमें उनकी आवाज में कुछ और गाने गाने को मिलते। आवाज तो उनकी बहुत अच्छी थी।
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आज का ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना सुनवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे किन साथियों ने आज के गीत को सही सही पहचाना है। सबसे पहले जवाब दिया है एजाज जी आपने चैशम से, उसके बाद शरफून योर आंसर इज करेक्ट, मनीषा शाह, रजनीश, गुरशरण, वत्सला जी, प्रीति हाजरा, विजय गुजोरी जी, दिव्या हैरो से, कर्सन पिंडोरिया जी, सहर, दिनेश पोपट जी, रोशनी जी, सलमा जी, तोची जी, कुकी, संध्या भावसर, आयुब चौहान जी, अमर जी एंड रानी जी स्लाव से। आप सभी ने बिल्कुल गाने को सही पहचाना है, तो वो गाना बहुत सुंदर है, बजाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनवा दूं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लीजिए मेरे महबूब फिल्म से था ये गाना जो 1963 में आई थी, नौशाद का म्यूजिक था और हमारे आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना था। और इस गाने को सुनकर वत्सला जी कहती हैं कि आपने तो मेरा दिन बना दिया इस गाने को बजाकर। चलिए ये गाना जिनका फेवरेट है, एजाज जी कहते हैं आपका फेवरेट है, सभी के नाम पर जाता है। और बस अब तो जाने की बेला आने ही वाली है। जाते जाते एक गाना और सुनवाऊंगी, लेकिन बता दूं कि ये जो फिल्म थी ना, इसने बहुत सारे नॉमिनेशंस पाए थे और ये फिल्म 1963 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके गाने आज तक सभी को पसंद है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Ye hai Laika Radio. Laika Radio. Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download Lemfi now. T's and C's apply. Is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
0: So gold rate is 108.6 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Laika Radio.
1: Laika Radio.
3: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Laika Gold and Laika Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
2: ये है
1: Laika Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज IPL का फाइनल मैच होने जा रहा है गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच में, और ये मैच शुरू होगा दोपहर के 3 बजे से। और मैच का हाल जानने के लिए आप हमें सुनते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: तो लीजिए बस अब जाने की बेला आ ही गई है, अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक। और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक मुझे ढेरों मैसेजेस भिजवाए हैं, मेरा साथ दिया है शो में और अच्छी अच्छी बातें कही हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी और मेरी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरे पास अनुराग होंगे गोल्ड पर, फजीला होंगी Laika Radio मैनचेस्टर पर, अनिका होंगी Laika Radio मिडलैंड्स पर। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को अपने कन्वीनियंट टाइम पर दोबारा सुन सकते हैं। और Laika Gold के गाने नॉनस्टॉप सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है Laika Gold 2 ऑनलाइन। 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है Laika Radio 90s ऑनलाइन। और पंजाबी गीतों के शौकीन है तो सुनिए Laika Radio पंजाबी ऑनलाइन। यानी कि बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए। तो बस थैंक यू कहना चाहती हूँ, अगले गीत को एंजॉय कीजिए और अगले हफ्ते तक के लिए मुझे बाय बाय कह दीजिए। मौसम अच्छा है, मजे कीजिए, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
1: This is Laika Radio.
4: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
6: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
7: Hi, this is Johnny Abraham.
8: Hi, main hu Deepika Padukone.
9: Hi, this is Papon.
10: Hi, this is Ehsan from Shankar Ehsan Loy.
11: Hi, I'm Nadeem Saifi from the Nadeem Shravan Jodi.
12: Hi, it's Ankit Tiwari.
13: Hi, this is Saleem.
14: Hi, this is Suleiman from Saleem Suleiman. Keep listening to us.
15: Like a radio classic. Plays now.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
3: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस. अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी.
2: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर.
3: डिपार्चर 5th ऑफ सितंबर. कॉल नाउ ऑन 0203-773-633.
2: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
5: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
4: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
8: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
3: Abhi call kijiye 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
8: Pooja Sweets and Savories.
9: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
6: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This week's number one on the Leica Radio Network Chart Show. Tune in every Saturday at 4 p.m. with Niraj across the Leica.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। आज के प्रोग्राम का आगाज मैंने जिस गीत के साथ किया, मुझे उम्मीद है आपने जरूर पसंद किया होगा। फिल्म का नाम था दिलवाले। आते ही कोई कहती आई लव यू या सुनने को मिल जाए आई लव यू तो कितना अच्छा लगता है हा? और दूसरा गीत भी बहुत खूबसूरत, फासले फिल्म से चुना था, 1985 की फिल्म थी और फर्स्ट सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म दिलवाले, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाजें, एंड दूसरे गीत में किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाजें। दोनों के दोनों गीत मैंने आपके नाम किया। जहां भी बैठे आप सुन रहे हैं आवाज की दुनिया के दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने सरिता चुन चुन कर लाई है आप ही के लिए। आपके मन को भा जाए तो मुझे आपकी तरफ से इशारा चाहिए। जहां भी बैठे हैं व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से इलाके में सुन रहे हैं। आप मिडलैंड्स में हैं, मैनचेस्टर में हैं, लंदन में हैं, ग्रेटर लंदन के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे सुन रहे हैं, ऐप के जरिए सुन रहे हैं, या फिर आपने ऑनलाइन इरादा किया सुनने का, या फिर फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं, 1035 पे सुन रहे हैं, मैनचेस्टर की फ्रीक्वेंसी पे, जैसे भी सुन रहे हैं, आप मुझे अपने होने का एहसास दिला दें। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं स्टूडियो में, मेरे आसपास आप सभी हैं। वैसे तो स्क्रीन पूरी की पूरी फुल है, हो चुकी है और आपके मैसेजेस आना शुरू भी हो गए, और कुछ को तो मैंने जवाब भी दे दिया। थैंक यू सो मच कि बड़े प्यार से आप पूरे 4 बजे मेरे साथ जुड़ जाते हैं। इस 4:15, आइए सुनते हैं ये वाला मैसेज और उसके बाद एक और बड़ा प्यारा गीत है। हाँ, क्या आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है प्रोग्राम में? कोई वर्ड है जो दोनों गीतों में सुनने को मिला था? अगर उस वर्ड पे आपको भी कोई गाना याद आ रहा है तो ज़रूर बता दें, मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंद को मैं पूरा कर पाऊँ। तो अब पहले मैं ज़रा ये काम कर लूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you today up to 127 rupees and 25 paisas. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.

0: ऑटोट्यून, कितना प्यारा संवाद और कितनी प्यारी प्यारी बातें. बहुत सुंदर गीत था. आप जानते हैं किस फिल्म का गीत था? नहीं तो मैं बता देती हूँ. फिल्म का नाम था भीगी पलकें और इस फिल्म में काम किया था राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने. इस फिल्म का संगीत तैयार किया था जुगल किशोर ने एंड तिलक राज. और इस गीत को लिखा था एम जी हशमत साहब ने और उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद भी किया. हरप्रीत, आपने एक गीत की रिक्वेस्ट की है, जन्म जन्म का साथ है निभाने को. आ रहा भाई, वो भी गीत आएगा, जरूर आएगा. थैंक यू एवर सो मच. आपने मुझे उसका लिंक भी भेज दिया इन केस आई कॉन्ट फाइंड इट. थैंक यू सो मच. संध्या भाव सर बड़े प्यार से सुन रही हैं और कहती हैं जन्म वर्ड जो है बार बार आ रहा है. यस यस, आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? आ रहा है तो बता दीजिएगा मुझे. और आप हैं सीमा हियाती, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत. तोची जी, सलमा इन मेडस्टोन, महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, दिव्या इन हैरो, उल्लास इन टोरंटो, दिनेश पोपट जी, वत्सला जी, फरीदा गुलाम अली जी, संतोष जी इन हैरो, सहर, हना, भारती जी, हंसा वोरा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह से साथ देते रहिएगा. मेरा वादा है अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुँचाती रहूँगी. एंड किशोर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आइए अब आगे बढ़ लें और ये बता दें कि ये गाना जो भीगी पलकें से था ये आप तक किसने पहुंचाया?
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: ye hai Laika Radio.
0: जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए आप मेरी आवाज़ अपने घर तक पहुँच मेरी आवाज़ आपके घर तक पहुँच रही है. कार्स में है तो कार में पहुँच रही है, गार्डन में बैठे धूप का मज़ा ले रहे हैं तो वहाँ पर सुन रहे होंगे, पड़ोसियों को भी सुना रहे होंगे, नेबर्स भी खुश हो रहे होंगे कि बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं उन्हें. लेकिन आज मुझे लगता है ज़्यादा लोग अंदर बैठे हैं क्योंकि आँखें तो उनकी टेलीविज़न पर है ना. आज तो इतना बड़ा मैच हो रहा है तो सभी टेलीविजन देख रहे होंगे. देखते रहिए, वहां देखना मना नहीं कर रही है सरिता, लेकिन कान इस तरफ होने चाहिए. ओके, क्योंकि अगला गीत जो मैं सुनाने जा रही हूं उसके बिना तो आज के प्रोग्राम का फर्स्ट आवर अधूरा रह जाता. कौन सा गीत हो सकता है? चलिए सुनिए, प्यार से सुनिए, गुनगुनाइए साथ साथ, गाना चाहे तो गाएं, खुलकर गाएं, और अगर इंजॉय करना चाहते तो ऐसे ही बैठ के इंजॉय कीजिएगा.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: उस्तादों के उस्ताद, उस फिल्म से चुना गया गीत उलाशी की लिखती है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। थैंक यू, मुझे मालूम है उलाश आपके साथ साथ बहुत से मेरे साथियों ने इस गीत को गुनगुनाया भी और पसंद भी किया। और हरप्रीत आपने भी लिखा है कि मुझे जो इमोशनल गाने होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू एवर सो मच। और अब ज़रा ये काम हो जाए और उसके बाद क्रिकेट का स्कोर भी बताना है। यस बताएंगे, जरूर बताएंगे, थोड़ा इंतजार।
2: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स, सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
3: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
4: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
5: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
6: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
5: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
6: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
5: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
7: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
5: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
8: फ्रेंकी गोज़ टू Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep, 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Leica Radio.
4: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
9: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
4: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
9: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
4: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
9: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
4: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
3: O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan.
5: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
7: खुद से भी ज्यादा.
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
7: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
5: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
8: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
4: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
9: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
10: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: What a beautiful song, beautiful song. और मुकेश जी की आवाज़ में एक गीत सुनना चाहती थी, सीमा हया थी. सीमा, मुझे उम्मीद है कि आप सुन रही हैं और इन्जॉय भी किया होगा ज़रूर इस गीत को. एंड वत्सला जी, आपने कहा कि सारे गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये गीत हमारे नाम कर दें, धन्यवाद आपका, तो हम आपके नाम करते हैं. एंड हरप्रीत, आप कहती है मेरे नाम कर दें, चलिए आपके नाम कर देते हैं. रानी ऑफ स्लाव, थैंक यू आपका भी, और आप ने भी इस गीत की फरमाइश भी की थी और कहा था कि ये गाना प्रोग्राम में शामिल कर दें. एंड आप हैं सुमीला मुंगर, कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद आई हैं, मैंने मिस किया आपको रियली. तोची जी, थैंक यू आपका भी. मिसेस शेख, बड़े प्यार से सुनती हैं प्रोग्राम, इंजॉय कर रही हैं, थैंक यू मिसेस शेख आपका. तोशी अमृता जी, आप भी सुन रही हैं. अमरजीत, थैंक यू आपका भी.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.77, Pakistani rupees 374.69, Sri Lankan rupee 443.52, Bangladeshi taka 165.22, Afghanis 86.13 and US dollars 1.34.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में है 108 pounds and 63 pence का एक ग्राम सोना.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Cranking out the biggest hits for the capital. This is Leica.
0: भी जिसने भी इस गीत की फरमाइश की थी, मुस्कुरा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा. और खुशी तो होती है जब अपनी पसंद पूरी हो जाए तो. हाँ,

0: तुमसे अच्छा कौन है, ये था फिल्म का नाम, जिस फिल्म का गीत आपने सुना, और उम्मीद करती हूँ इस गीत को एंजॉय भी किया आपने। हरप्रीत, आपने इसकी लिंक भी भेजा था कि ये गाना प्रोग्राम में शामिल कर दें, तो आपके साथ साथ मेरे दूसरे सभी साथियों ने भी इस गाने को ज़रूर एंजॉय किया होगा। शम्मी कपूर और बबीता थे शायद इस फिल्म में, तो उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। अब क्रिकेट के मैच में क्या हो रहा है जान लें।
1: Laika Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England cricket.
0: भी आज तो फाइनल मैच है, अहमदाबाद में हो रहा है गुजरात टाइटंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दे चोज टू फील्ड फर्स्ट, सो गुजरात टाइटन्स के 20 ओवर जस्ट कम्प्लीटेड एंड दे हैव मैनेज टू मेक 155 रन विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, सो 20 ओवर्स का मैच है तो इन्होंने 155 रन ही बनाए हैं। अब देखते हैं रॉयल चैलेंजर्स क्या कमाल करते हैं और किसकी जीत होती है, ये जानने के लिए मेरा साथ देते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत इस सावर का फिल्म कुर्बान से चुना था मैंने, और कुर्बान आज ही के दिन 1991 में रिलीज हुई थी। इसे दीपक बाहरी ने बनाया था, डायरेक्ट किया था, एंड विनय शुक्ला की कहानी थी। सलमान खान, आयशा जुल्का, सुनील दत्त एंड कबीर बेदी ने इस फिल्म में काम किया था और आनंद मिलिंद का था संगीत। उम्मीद करती हूँ कि वो गीत आपने याद किया, ज़रूर इन्जॉय भी किया। तो अब दूसरा गीत जो था वो मैंने फिल्म मास्टर जी से लिया था। मास्टर जी जो थी वो कब आई थी फिल्म, आज ही के दिन इन 1985, और इस फिल्म को किसने बनाया था, के रघुवंद्र बॉब ने, और इस सॉरी के रविंद्र राव ने बनाया था इस फिल्म को, और इस फिल्म में काम किया था राजेश खन्ना एंड श्रीदेवी ने। ये मास्टर जी की कहानी थी, एक मास्टर जी जो कि विडोर हैं और उनके एक छोटा सा बच्चा होता है और वो विलेज में आते हैं एज ए मास्टर जी, और वहाँ इन्हें मिलती है श्रीदेवी जो इनसे प्यार करती है। जब मास्टर जी मना कर देते हैं तो वो ओपनली पूरे गाँव में फैला देती है कि मास्टर जी उस पर डोरे डाल रहे हैं और हमारा अफेयर है। कि अगर आपने पूरी फिल्म देखनी हो तो ज़रूर देखिएगा और बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। वैसे द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 31st of May 1985 को एंड इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी ऑफ 1985। डिड यू हियर दिस? बप्पी लहरी का था संगीत और गीत आपने सुन लिया। सो दो गीत आपने सुने। ये प्रोग्राम का दूसरा आवर है और मैंने सोचा कि चलिए आज एक ही आज ही के दिन जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। एक और फिल्म है जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी इन 1974, फिल्म का नाम था इम्तिहान, उसके बारे में बताऊंगी बाद में। लेकिन पहले आपसे पूछ लूं कि पहले आवर में तो आपने मेरा साथ दिया खूब और खूब मैसेजेस भी लिखते रहे, अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं ये नोटिस करती हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा मैसेज करती हैं। क्यों? सभी मेन जो है वो बस लेडीज पे छोड़ देते हैं कि चलिए चलिए तुम सरिता को मैसेज लिख दो। तो अगर आप मेल हैं, मेल लिस्नर हैं, लिख सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको ये दोनों गाने कैसे लगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: But your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 25 paisas today. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into a win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 34.99।
2: हमजा समोसास 3 for 10।
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
2: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
2: केसर मैंगो पल 149। फूल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
2: व्हाइल स्टॉक्स Last.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner Leica Radio.
2: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
2: High appreciation.
6: In Dubai.
4: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Laika Radio.
7: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris aur timeless beauty of Italy ke through.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333. Now, Apta Bonded, Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था संगीत, और इस फिल्म में काम किया था विनोद खन्ना ने, साथ में थी तनुजा एंड बिंदु, एंड मदन सिन्हा ने इसे डायरेक्ट किया था। और ये फिल्म भी आज ही के दिन 31 मई 1974 में रिलीज हुई थी। आपने कब देखी थी ये फिल्म, याद है आपको? फिल्म का नाम था इम्तिहान, एंड द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज अराउंड द आइडियलिस्टिक प्रोफेसर, अगेन मास्टर जी जैसे, हु डिसाइड्स टू रीफॉर्म अ ग्रुप ऑफ राउडी स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज, एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द 1967 ब्रिटिश फिल्म टू सर विद लव, एंड हैज इंस्पायर्ड द टेलीविजन सीरीज जीत एज वेल। द फिल्म वॉज शॉट इन नासिक, एंड इट्स अ रीमेक ऑफ तमिल फिल्म नूथरुकु नूरु, शायद मैंने गलत ना बोला हूँ, वैसे यही ऐसी ही इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी मेरे ख्याल में। और अगर देखी थी फिल्म तो आपको कैसी लगी? वैसे ये फिल्म अच्छी थी और चली भी थी फिल्म, एंड इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, मजरू सुल्तानपुरी जी ने सारे के सारे गीत लिखे थे, और स्पेशली एक गाना तो आप चिंतन के साथ बहुत सुनते हैं, कौन सा गाना है? रुक जाना नहीं कभी हिम्मत हार के, वो वाला गीत। तो मैंने पहले सोचा था वही गीत सुनवाऊँ, फिर मैंने कहा वो तो आप सुनते ही रहते हैं, तो आज मैंने इस गीत को जगा दी। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किए। ये गीत आप तक किसने पहुँचाया ये भी बता दूँ।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जहीर खान साहब कराची में हमारा प्रोग्राम सुन रहे, कहते हैं नहीं नहीं मैं मेल लिस्टर हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और एक बड़ा प्यारा सा मैसेज एक 5 साल के बच्चे ने लिखा था, अब मैं ज़रा ढूंढती हूँ उसको, पहले ये काम भी कर लें, बता दें आपको कि किशोर कुमार के फैंस के लिए एक खुशखबरी है, और वो क्या है कि एक ख़ास प्रोग्राम हो रहा है, और ये प्रोग्राम हो रहा है कब? On 19th June को at the Prince Regent Hotel Chigwell Essex में। Tickets available at eventbrite.co.uk और you can call 0208514 5400। Exclusive radio partner है Laika Gold Radio। और किशोर कुमार के crazy fans के लिए सभी किशोर कुमार के गाने गाए जाएंगे, and you will definitely enjoy। और इसमें गाने वाली जो आवाजें हैं वो आपको मिलेंगी केतन जी की, उनके साथ इंद्रानी, संजय एंड ऑल्सो द 515 बैंड।
1: Laika Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।
0: जबक से चुना है इस गीत को, 1961 की फिल्म थी। ऐसे जेम्स कहाँ मिलते हैं।

What a beautiful song, Asha Bhosle and Mohammed Rafi Saab ki awaaz hai. Film ka naam tha Nayi Umar Ki Nayi Fasal, 1965 mein aayi thi ye film. Well, aap kahenge ki Sarita har geet ke baad kehti hai bahut beautiful gaana tha, kyunki acha sangeet mujhe bahut acha lagta hai. Aap kahenge bura sangeet kya hota hai? Well, wo gaane jo kaanon ko sunne ko na acche lage to wo main play bhi nahi kar sakti hu, aur kabhi kabhi isiliye main choosy ho jati hu and umeed karti hu ki meri pasand aapki pasand ban jati hai. Jahan bhi baithe sun rahe hain, enjoy kijiye, bas main yahi chahti hu. And मैसेज तो हर गीत के बाद आप बार बार लिख रहे हैं और गानों की भी अप्रिसिएशन हो रही है. थैंक यू. वत्सला लिखती है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, आज तेरे बिना नींद नहीं आएगी. किसके बिना? आई एम लविंग द सॉन्ग्स यू प्लेड. उर्मिला पटेल जी ने लिखा है, थैंक यू. ईरम लिखते हैं, सरिता जी आई एम ऑल्सो लिसनिंग, थैंक यू. वजाहत, जस्ट ट्यून इन. अलेक्सा क्यों पहले कहा, अलेक्सा को छोड़कर बाहर गए हुए थे कहाँ. एंड संतोष जी हैरो में आपने भी अभी ज्वाइन किया है. विजय गनोवा जी मॉरिशियस वाले आप भी सुन रहे हैं. नमस्ते सरिता जी, मैं भी मर्द श्रेणी में आता हूँ. दोपहर की राम राम जी. एंड संध्या भावसर जी, थैंक यू अगेन आपका. जहीर खान साहब आपका भी. नाजिया शकील, अरुणा जी एंड फरजाना जी, आप सभी इंजॉय करिए. मनु माधवानी, सुमीला मुंगर, मिसेस शेख, रानी इंसलाव, तोची जी, भारती डी जी उल्लास टोरंटो में, सलमा जी मेडस्टोन में, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, दिव्या हैरो में, दिनेश पोपट जी, फरीदा गुलाम अली जी. एंड अभी तक जगतार जी नहीं आए हैं. हाँ,

अभी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: What a beautiful song, अनुराधा पौडवाल एंड सुरेश ओबराय की आवाज थी. और मेरे कुछ साथियों ने पूछा है कि किसकी आवाज है ये. सुरेश ओबराय की आवाज थी और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में अनुराधा जी का ये गाना मैंने चुना आपके लिए.
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: और इस गीत के जरिए हम याद कर रहे हैं राज खोसला जी को. हिंदी सिनेमा के महान फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक. उनका जन्म 31 मई 1925 में हुआ था. 9th जून 1991 को उनका निधन हो गया था. 1950 से 80s तक के दशक में उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाई. उनमें से थी ये फिल्म भी.

0: रहे हैं।
1: ये फिल्म भी बनाई थी राज खोसला साहब ने, उनको हमने याद किया इन गीतों के जरिए। वैसे तो मैंने सभी लाइनअप किए थे कि इस आवर के बाकी के गीत भी उन्हीं की फिल्मों के होंगे, लेकिन अभी अभी हमें खबर मिली है कि सुमन कल्याणपुर जी नहीं रही हैं। सो बाकी जो गीत हैं वो मैं उनकी आवाज़ में गाए हुए आप तक पहुंचाऊंगी। सुराज खोसला जी के बारे में बात कर रहे थे, वैसे शुरुआत के दिनों में वो एक गायक बनना चाहते थे। उन्होंने कुछ समय तक ऑल इंडिया रेडियो में काम भी किया, बाद में वो गुरुदत्त के असिस्टेंट बने, जहां से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था। CID, काला पानी, वो कौन थी, मेरा साया, दो रास्ते, मेरा गाँव मेरा देश, प्रेम कहानी एंड जिसमें राजेश खन्ना एंड मुमताज थे, एंड नहले पे दैला एंड मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये सभी फिल्में उनकी थी। दोस्ताना भी, पर उसके बाद उनकी फिल्में थोड़ी सी नहीं चल रही थी तो वो काफ़ी निराश हो गए थे। एंड उनकी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी की थी। आफ्टर हिज डेथ द राज खोसला फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश बाय हिज डॉटर सुनीता खोसला भल्ला विद शत्रुघ्न सिन्हा और बाकी भी बहुत से आर्टिस्ट थे। एंड हम हमेशा जब भी उनके गीत प्ले करेंगे तो उन्हें याद करते रहेंगे। राइट, साउथ ऑल ट्रैवल वालों का मैसेज भी जल्दी से आप तक पहुंचा दें। मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ ऑल ट्रैवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स that includes flights, hotels and atoll protection, trusted for over 40 years and winner of the British Travel Award. Visit South All Travel or call on 0208-574-8410.
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. ये है लाइका रेडियो।
3: जी टीवी HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
4: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
3: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
4: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
3: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
5: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
3: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।

ये आवाज है उस कलाकार की, उस गायिका की जो आज अभी हमें छोड़कर चली गई। ये आवाज है सुमन कल्याणपुर जी की।

0: लेकिन इनके गीतों के जरिए हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमेशा इनके गीतों को पसंद किया। इनकी अक्सर तुलना लता मंगेशकर जी के साथ हुई। ब्यूटीफुल वॉइस सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रही।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: भी 28 जनवरी 1937 में उनका बर्थ हुआ था ढाका बांग्लादेश में, और इनका करियर 60-70s में बहुत लोकप्रिय हुई थी, और उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी कई भाषाओं में गीत गाए। एंड उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब एंड मन्ना डे, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ काफ़ी फेमस, बहुत पॉपुलर गाने गीत लाइक आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, दिल ने फिर याद किया, ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं जो उनके, तुमने पुकारो और हम चले आए, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, अजूना आए बालम, ऐसे बहुत सारे गीत हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति।
2: This is Leica Radio across the Midlands. Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 127.68, Pakistani rupees 374.7, Sri Lankan rupees 443.59, Bangladeshi taka 165.25, Afghanis 86.16.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: It's 108 pounds and 63 pence per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
5: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भाई फाइनल चल रहा है इस टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने बना लिया 145 रन, उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए इन 15.5 ओवर्स एंड 25 बॉल्स में दे नीड ओनली 11 रन।
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड by the FCA.
3: Ye hai Leica Radio.
0: Another beautiful song sung by Suman Kalyanpur. I always loved this song. नूर महल था फिल्म का नाम। मेरे महबूब ना जा आज की रात ना जा। एंड फॉर ईयर्स आई हैड बीन थिंकिंग दिस इज लता मंगेशकर सिंगिंग, लेकिन ये आवाज़ है सुमन जी की।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
3: दिल तो टूट पे किया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अमीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803 EE 392, एंड अप टीवी प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Listen back to your favorite shows by logging on to likeradio.com and selecting Midlands or the mobile app.
6: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
7: This is Alka Yagnik.
8: Hey everyone, this is Arman Malik here.
9: Hi guys, this is Taha Shubhadusha.
10: Hello, namaskar, adab. I'm Shah Rukh Khan.
11: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Laika Radio. Laika
12: Radio. Okay, so Tico, right? Neeraj here. I present the Laika Radio Network Chart Show every Saturday, going out on Laika Radio Greater London, Laika Radio Greater Manchester, and Laika Radio Midlands from 4 till 7.

0: time now for Join the Dots with me, Mesa, on my show, The Sunday Wrap. मैं आपसे मिलने आती हूँ every Sunday evening and आप जब मुझसे मिलते हैं और हम साथ मिलके ये fun games खेलते हैं तो बड़ा मजा आता है ना. What is this game? Well, most of you know about it already. Well, let me tell you. इस गेम में मैं आपको तीन क्लूज देती हूँ एक बॉलीवुड फिल्म की एंड यू हैव टू जॉइन द क्लूज एंड टेल मी विच मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट. लेकिन कम से कम क्लूज में जवाब देना ये आपका काम है. दैट इज द चैलेंज गाइस. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस टुडेज मूवी इन द फर्स्ट क्लू इटसेल्फ. व्हाई नॉट. तो पहला क्लू मेरा आज का है. आज की फिल्म 2011 में यानी 2011 में रिलीज हुई थी और ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है. इनफैक्ट ये मूवी एक मलयालम फिल्म की रीमेक है. फिल्म डिड रियली वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड इसका म्यूजिक जो है बड़ा ही जबरदस्त भी था. फिल्म के मेन लीड्स की बात करूं तो फिल्म के हीरो हैं बॉलीवुड के भाईजान और उनकी हीरोइन बनी है द वेरी ब्यूटिफुल बेबो. टेल मी विच मूवी दिस इज. 2011 में रिलीज हुई रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो एक मलयालम मूवी की रीमेक है और फिल्म में ग्रेट म्यूजिक है. इट वॉज अ ग्रेट हिट एट द बॉक्स ऑफिस और फिल्म के हीरो बॉलीवुड के भाईजान हैं और हीरोइन है द वेरी ब्यूटिफुल बेबो. सेंड इन योर आंसर्स, सेंड इन योर गेसेस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर.
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
2: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियां रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 App।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02008390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. Plus, no entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
7: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
6: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
7: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
6: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
7: On Sunday, the 7th of June at Hackney Empire.
6: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
9: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
8: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में। कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
11: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
12: Aati Faslam Weekend. Catch him live at the O2 on 14th June. Tickets at AXS.
13: Exclusive partnership, Leica Radio.

0: is Leica Radio.
1: This is the romantic hour of my show. The show is the Sunday Wrap with me, Mesa, on Leica Radio, 1458 AM in Greater London, DAB Digital Radio. Across the Midlands, Google Home, Alexa, LeicaRadio.com और Leica Radio मोबाइल ऐप पर आप मुझे सुनते हैं. वैसे आपके पास अगर हमारा Leica Radio का मोबाइल ऐप है, then you can also listen to Leica Gold Radio, which is London's number one Asian retro music station. And इसके अलावा, of course, Leica Radio Greater Manchester and Leica Radio Midlands, the Leica Radio 90s, जो of course आपने सुनाई होगा, UK's first 90s Bollywood music station, Leica Radio Punjabi, which is our first ever Punjabi music station, and Leica Gold 2 as well, which is a Bollywood classics non-stop channel. All that, yes, the Leica Radio network is expanding. आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से, थैंक यू सो मच. आप हैं तो हम हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव. एंड कमिंग बैक टू दिस आवर नाउ, दिस इज द रोमांटिक आवर ऑफ दिस शो. बहुत सारे ब्यूटीफुल प्यार भरे नगमे, और साथ साथ आपको याद दिला दूं, दिस इज ऑल्सो द आतिफ असलम स्पेशल वीकेंड. सो एवरी आवर ऑन सैटरडे एज वेल एज संडे, यू हैव बीन लिसनिंग टू आतिफ असलम सॉन्ग्स. एंड आतिफ असलम इज गोइंग टू बी इन टाउन ऑन द 14th of June 2026 at the O2 in London, performing live just for you guys. So do check out if tickets are available. Abhi tak bhi, then go grab it. AXS.com pe Leica Radio is the official radio partner of this event.
0: Join the dots with Mesa
2: Leica Radio.
1: और साथ साथ चल रहा है जॉइन द डॉट्स. जैसे कि आप जानते हैं, इट इज माय फन गेम जो मैं आपके साथ खेलती हूँ इन द फर्स्ट एंड सेकंड आवर ऑफ द शो. एंड इन द थर्ड आवर आई हैव गॉट अनदर फन गेम कॉल्ड कैच मी इफ यू कैन. और कंग्रेचुलेशंस गोइंग आउट टू साधना एंड नीलू एज वेल फॉर गिविंग द करेक्ट आंसर टू टुडेज जॉइन द डॉट्स गेम. यू गाइज हैव गेस्ट द मूवी इन जस्ट वन क्लू, विच इज अमेजिंग. तो मैंने आपको पहले क्लू में ये बताया कि आज की मूवी 2011 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी. फिल्म डिड रियली वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. आई रियली एंजॉयड दैट मूवी. एंड मूवी में बहुत अच्छा म्यूजिक भी था. और फिल्म के लीड एक्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, दैट द फिल्म फिल्म के जो हीरो हैं वो हैं बॉलीवुड के भाईजान, और उनके साथ हीरोइन बनी है द वेरी ब्यूटिफुल बेबो. अब आपको सेकेंड क्लू देती हूँ, शायद चीजें थोड़ी आसान हो इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट गेस द मूवी येट. तो फिल्म में एक पॉलिटिशियन है हु अपॉइंट्स लवली बलवंत सिंह टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर दिव्या फ्रॉम सम ऑफ हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज हु आर टारगेटिंग हिम. दिव्या जो है, शी सून फॉल्स इन लव विद लवली, बट शी इज अफ्रेड टू रिवील हर आइडेंटिटी. सो वो छाया बन के लवली से फोन पे बात करती है, एंड लवली फॉल्स फॉर छाया नॉट नोइंग हु शी रियली इज. अ लव स्टोरी, अ ब्यूटिफुल वन, रिलीज्ड इन 2011. इफ यू नो विच मूवी दिस इज, अपने जवाब इस नंबर पे भेज दे.
0: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So using SBI, your £1 is equivalent to 127.3 Indian rupees, and you can send money to India via SBI Yono app or branch before the end of June. And guess what? You'll be in to win a £75 voucher daily when you spend over £1,000, and a 1 gram gold coin every week when you send over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
0: Your Sunday evenings with Mesa, proudly sponsored by TicketsToIndia.co.uk. For the best rates, book online or call 020-8518-9100. Bringing India closer.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
10: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio. Zara Holi.

0: beautiful track there from the movie Jab Jab Phool Khile, Mohammad Rafi Sahab aur Suman Kalyanpur ji ki awaaz mein. Aaj definitely is a sad day for all music lovers kyunki legendary Indian singer Suman Kalyanpur passed away just today at her residence in Mumbai. She was 89 years old. Suman Kalyanpur was born on January 28, 1937 in Bhavanipur in Bangladesh, then undivided India. Aur Suman ji ne music aur singing childhood se seekhna shuru kiya. In 1958 she got married to Mumbai based businessman Ramanand Kalyanpur and started her career singing for All India Radio in 1952. Aur then unhe apna pehla chance mila to sing for the Marathi film Shukrachi Chandni in 1953. Aur phir unhone Bollywood mein bhi kai gaane gaaye, Hindi mein, Marathi movies mein wo kafi popular rahi. Aur unhone Bollywood mein Shankar Jaikishan, Roshan, Madan Mohan, S.D. Burman, in sabhi ke liye gaane gaaye. अपने करियर में कई बार उन्हें कंपेयर किया गया टू लता मंगेशकर, क्योंकि उनकी जो वॉइसेस थी दिक्का दे वर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. बट सुमन जी इन एन ओल्ड इंटरव्यू हैड सेड दैट शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी बिटवीन हर वॉइस एंड लता मंगेशकर वॉइस, बट शी ऑलवेज थॉट दैट लता जी और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और ऐसी राइवलरी की कोई बात नहीं थी. सुमन जी, वी विल मिस यू एंड आई एम श्योर द होल music industry is gonna miss her forever.
1: Like a radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर आप हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं देन यू नो व्हाट, यू कैन मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथॉल ट्रैवल्स. यू कैन एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मच मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन. ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड, इट इज अ साउथॉल ट्रैवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. विजिट साउथॉल ट्रैवल्स और कॉल देम ऑन 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Aatif Aslam Weekend.
3: Aatif Aslam Weekend.
2: Catch him live at the O2 on 14th June. Tickets at AXS.
4: Exclusive partnership Leica Radio.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। ये है लाइका गोल्ड।

0: Radio.
1: Yes, this is Like a Radio, and I'm live on 1458 AM DAB Digital Radio across the Midlands. Alexa, Google Home, likearadio.com or Like a Radio mobile app par aap mujhe sunte hain. मैं कौन हूँ? Well, मैं हूँ मैसा और आप मुझे every Sunday सुनते हैं. मैं आपका साथ देती हूँ on my show, The Sunday Wrap, from 7 PM to 10 PM. And the show is sponsored by a very, very affordable travel website, which is called tickets2india.co.uk. If you haven't checked it out, then do so, क्योंकि अक्सर उनके पास, you know, कई सारे deals होते हैं, which makes your travel quite affordable and quite, you know, lots of offers जो आपके travel को बड़ा ही, you know, low cost बना देता है. So if you haven't booked your tickets for your next trip, then you have to check out this website, tickets2india.co.uk. इसके अलावा ये कहना चाहूंगी, बड़ा बड़ा थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु ट्यून इन टू द शो एवरी वीकेंड, एंड थैंक यू फॉर योर लवली मैसेजेस. थैंक्स फॉर टेकिंग पार्ट इन जॉइन द डॉट्स, विच वॉज आवर फर्स्ट फन गेम जो हमने पहले और सेकेंड आवर में खेला. अब इस आवर में एक और फन गेम होने वाला है, कैच मी इफ यू कैन, विच इज गोना स्टार्ट इन जस्ट अ बिट. And there'll be loads and loads of beautiful tracks also, which you will be able to listen to, including the Laika chart topper of this week, which is a new chart topper, beautiful indie pop hit, a beautiful ghazal, and the Pakistani hit of the hour as well. So let's not waste more time and get kicked off with Catch Me If You Can.
0: Catch Me If You Can with Mesa.
2: Laika Radio.
1: Catch Me If You Can इस गेम में मैं आपके बॉलीवुड लिरिकल नॉलेज को टेस्ट करती हूँ. मैं ये जानना चाहती हूँ कि द सॉन्ग्स दैट वी लिसन टू, द सॉन्ग्स दैट वी लव, द सॉन्ग्स दैट वी सिंग आवरसेल्व्स, हमें इसके लिरिक्स कितनी अच्छी तरह से आते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज द क्विज दैट इज कॉल्ड कैच मी इफ यू कैन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको तीन सॉन्ग लाइन्स सुनाऊंगी और उनमें से किसी एक सॉन्ग लाइन में मैं एक छोटी सी गड़बड़ करने वाली हूँ, और आज की गड़बड़ तो बहुत ही, यू नो, सटल है. आई रियली डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू कैच इट, बट लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू डू. पहला गाना है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे सोचता रहूं, फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी. दूसरा गाना है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, फ्रॉम मन. और तीसरा गाना है, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, फ्रॉम जब वी मेट. बताइए मैंने किस गाने में गड़बड़ की है ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर.
0: WhatsApp Laika Radio Midlands now on 07404-793-719.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: आतिफ असलम लाइव इन द UK.
3: झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त
4: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
5: ये है Leica Gold

0: ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at LeicaRadio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio. ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394।
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.